क्या सोचा, आज करे तो कल, कर कल करे तो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है। तुम्हारे लिए

0: अपने से की यह रोड स्लीपर लगता है। छोटी तो नहीं है पर मैं बोल रही हूँ
1: Staff on the Mandurah Narragup channel having a conversation. Check your radios, Mandurah Narragup. Check your partner's radio. You're transmitting a conversation, somebody.
0: Stop it,